0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे सत्तो दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।
1: नाम मिले ताजीवा नानक नाम मिले।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124, 4774 ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ, ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਸਾ ਪਲੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक ईगल एशफोल्ट पेविंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। कैलगरी अते एडमिंटन विच किसे भी तरह दी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल अते रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जिवें पार्किंग लॉट्स, ड्राइववे, साइडवॉक्स ते लुक पवाण दी जानकारी लई कॉल करो 403-918-3327 403-918-3727।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: थल फिर मरा से

जानो ही सब से दिल से है जिद कुवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ प्रेम बणी मन मरया अनिया लेणिया राम दाजे जिस लागी पीर पे रम की

0: दिल हर जगत तर तरिया और तर तरिया।
1: सलोक महला पहला, सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड, सचे तेरे लो सचे आकार, सचे तेरे करने सर विचार, सचा तेरा अमर सचा दीवान, सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान, सचा तेरा कर्म सचा निशान, सचे तुदा खेला करोड़, सचा सबतान सचा सबजोर, सची तेरी सिफत सची सलाह, सची तेरी कुदरत सचे पात साह, नानक सच त्यान सच, जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
0: वड़ी वड़ाई जा वड़ा नाओ, वड़ी वड़ाई जा सच ने आओ, वड़ी वड़ाई जा निचल थाओ, वड़ी वड़ाई जाने आला, वड़ी वड़ाई उपजे सब पाओ, वड़ी वड़ाई जा पूछना दात, वड़ी वड़ाई जा पे आप, नान कान कथनी जाए, कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
1: एहो जग सचे की है कोठड़ी, सचे का विच वास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना पहाने कड़ ले, एक ना माया विच निवास, ए पे आख ना जापई जे किसे आने रास।
0: नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास, पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना में, धर्म बहाल्या तो सच्चे ही सच निबड़े, चण वख कडे जमाल्या थान पाइन कुड़िया, मोह काल है दोज के चाले तेरे नायर ते सिजन गए, हार गए सिठगण वालिया, लिखना में तरम बहालिया। हम मूर्ख

0: जप अनत तरंगा मिल संत जना घर पाया। नानक सतसंगा सतसंगा
1: सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद विस्माद देखै हाजरा जी वेख विडान है विस्माद। नानक बुजन पूरे पाग महला पहला।
0: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पतालिया कासी कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरती जान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बैसंत कुदरत तीखा सब तेरी कुदरत।

हमें कर्म कमाए, हमें ही बंदना जो नहीं पाए, हमें कितों उपजे कित संज में जाए, हमें दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनों

मंदे पैन रखोन कर सुखे कर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।

0: अब तक हर चल हर हर गोया नानक हर इक हर इक
1: सलोक महला पहला पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपलवां मंडलां खंडां वर पंडां।

0: सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ ते सतसी बण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लखन किया चंगिया लखना प्रवान लख तप पर तीर्था सहजोग बेवान लख सुरतन संग्राम रण में छिटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथया कर्म सचा नहीं सान पड़ी सचा साहेब एक तू जिन सचो सच बरताया जिसने मिले सच
0: सच कमाया।

ससगुर बल फणे मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो। सोई रामदास गुर बल फणे मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो।

0: रामदास गुरु, रामदास गुरु।
1: सोई रामदास गुरु बल पाणे, मिल संगत तन तन करो,
0: मिल संगत

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बबी खो खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलण हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो।

0: होए पौड़ी दान महंडा तली खा तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए ओए कुमार आलख ते आइए पलते वे हो पाइए रे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया रोड़ ते ना दी पाइए हथोड़ी सिगवाइए सिगवाइए सिगवाइए
1: मस्तक लाइए पूरा लाल छड़िए हो एक मन अलग से आइए पालते वे हो पाइए जेवी ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया था तोड़ के ना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।

देखो के वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत जो संजे करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जती सदावे जुगत न जाने छट बह घर बार, सबको पूरा अपे होवे घट न कोई अख है, पत परवाना पीछे पाये तनानक तो ले आ जापे भला।

0: दुख दारू सुख रोग पे आ जा सुख ताम ना होई। तू करता करना में ना ही जाहू करी ना होई। बलिहारी कुदरत से तिरंत ना जाई लखिया रहा। जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सुख वाले हो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र।

बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होवे बिन हैगा तायो मी साधन मारिए जे हकाल कालना देवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेटिए जित दर गए गया हरिए पड़े आते हो।

कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हाँ किस पे आप विचाई दर्शन हर देखण के ताई कृपा करें तो सतगुरु मिले हर हर नाम त्यार दर्शन दीजे खोल किवा।

मन जान गावे अछल छला, गावे गुण तुम अटल मंडल वे, भगत पाए रस जानो कब कल सुजस गावो, गुरु नानक राज जोग जिन मानो।

0: जोगत माणियो
1: सतजुगत माणियो छल्यो बल बावन पायो त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
2: गुण गावे रविदास भगत जै दी तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ और न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग शायो
1: गुण गावे पयाल भगत नगाद पयंगम महाद्यो गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उचरे जिन कुम सब श्रेष्ठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो
0: गुण गावे नवनाथ तन गुरु साध सुमायो मां ताता गुण रवे जैन चकर वे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो दूर बा पुरो अंगरे गुरु नानक जस गायो कब का सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो
3: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरणा मिले दान संत रेण जे लग पाओ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावै बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुरपाद ब्रह्म
4: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद

आए, पूर श्रब रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ, से जन लगे भगते, हर गुर

तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगे ओ बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत।

0: राखो सरनाई।
1: सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हुवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटिया। सजन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहु। सजन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलोक राज कपटं, रूप कपटं, तान कपटं, कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बेनहार संग न चालते। राज कपटं, रूप कपटं, तान कपटं, कोल गर्भत है। संचंत बिखिया छलं छिद्रं, नानक बेनहार संग न चालते। पेखंदड़ की भुल तुम्मा दिसमा सोहना, अड ना लहंदड़ मुला।

तिसका कहो क्या जताना, जिसते वंजिया हार बिसरया क्यों त्रिपतावा।

0: प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कोल गर्भत है संचंत विखिया छलं छिद्रं नानक बिन हर संग न चालते राग जैत सरी दी वार दी पौड़ी दसवीं सलोका नाल
1: जो मांगे ठाकुर अपने ते मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते मांगे ठाकुर अपने।

जीवे जो मांगे ठाकुर अपने ते, मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, मांगे ठाकुर अपने ते।

0: नानक मेर शरीर का एक रथ बाहो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञान बुझताए सात जुग संतो का धर्म ग्रथ बाहो त्रेता रथ जते का जोर ग्रथ बाहो द्वापर तपे का सत ग्रथ बाहो काल जुग रथ गन का पूर ग्रथ बाहो महला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको ससमावे हरिग कह रहे अपर भूर राम नाम देवा मैं सूर नए ले प्रचित जाए नानक ता मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद उथर बन हुआ ना खुदाई अलो भरा नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया जा रे बेद होए सच्चा बड़े गुणे इतने चार विचार हाओ भगत करनी सदा ओ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिट्टा वारे जित मिले खसम संभाले आज दर देश रंजन दिया एनी ने तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे दुबे से बन जा रहा सतगुरु है गोहिता बिरले किने विचारिया कर कृपा
0: पर तरिया
1: पर तरिया पर तरिया
2: पौड़ी सतगुरु बिटवारे जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हें त्रि जगत निहालिया कसम छोड़ तुझे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है बहुत आदर लेकिन विचारिया कर कृपा पार तरिया कर कृपा पार तरिया।

0: नानक ने चौथावे बिन सतगुर वाट न पावे पड़ी कपड़ सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे जाय भीड़े जावना नंगा दूध चलिया तांद से खरा डरावना
1: पछुतावना
0: पछुतावना पछुतावना।

दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जने उजी का है ता भांडे कत ना हो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमन स्नान का जो गल चले।

0: दिन हर पूज करावा पूज करावा।
1: सलाम महला पहला जेकर सुतक मनी है सब ते सुतक होए गोहे त लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोई पहला पानी जियो है रित हरिया सब कोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवर सोए नानक सुत के बना त्रै ज्ञान उतर।

0: नानक हर कुन बीजया, त्रिशोक नयावे हर कुन के।
1: सलोक महला पहला, पहला सुचा पोहे सुचे बैठाए, सुचे गे रखे उन कोई न फिटे हो जाए। सुचा होए के जीव लगा पण श्लोक, बहुत ही जाई सटे।

0: एक नहीं आस की दूजा लग जाए, नानक आस कांडिये सद हीरे समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो, आस के होना किए जिले खैबर ते सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवें करें मुढ़ों को था जाए, नानक दोवें कोड़ियां थाए न काई पाए, पो जित से भी है सुख पाईए सो साहेब सदा संभालिए, जित की ता पाईए अपना सखाल बुरी क्यों खाए।

0: पाए कसमे करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहि मोह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस करिए साबास नानक हुकम न चली नाल खसम चले अरदास
1: जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राम।

जगत गुरु की। जनक सोए जिन जानिया, उन मन रथ धरिया। सत संतोख समाचरे, अफरा सर भरिया। अकथ कथा

राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कोल गर्भत है संचंत बिखिया छलं छिद्रं नानक बेनहार संग ना चा।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पहु।

0: दास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरनाई।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत घर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सह बहुं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गोरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा युग ऐ सूरज चढ़े हजार इतने चनन होंदियां गुरबिन कोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सौ नाह फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुवाहा पौड़ी आपी।

0: संगल काते चलाया आगे करनी किरत वांची है बैली का कार समझाया था ना हो भी पाउदी और सुने क्या रुआया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
1: ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।

0: गन नानक गुर तिनी पाया जिन तोर लिखत लाट लिखा से वाहे गुरु।
1: सलोक माला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए सार पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खार पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आर जा पड़िए जेते सांस। नानक लेखे एक गल और हों मैं चकना चाक महला पहला।
0: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ भव्या ते तुलव्या बहु भेख किया देह दुख दिया शाह विदिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहनस कहरे मौन विगूता क्यों जागे गुरबिन सोता पग उपे ताना अपना किया कमाण हल मल खाई सिर छाई पाई मूरख अंधा पत गवाई बिन नावे किछ थाए न पाए रहे बे पानी बड़ी मसाणी अंध न जाने है फिर पछताण सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे सहते नह केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरा।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार,

सब जग चलन हार। कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजह करह प्यार, धर्मी धर्म करह गावा वै मंगे मुख द्वार, जती सदा वै जुगत न जाने छड वह कर बार, सब को पूरा आपे हो वै कट न को आखे, पत पर बाणा पिछे पाई, नानक तो ले जापे महला पहला।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना हो, तू करता करना मैं ना जा हो करी ना हो, भले हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा, जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर आया, तू सच्चा साहिब सिरस वाले जिनकी तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कव जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा। एक कृष्णं सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा बस दिवस जे कौ जाने पे, नानक ताका दास है सोई निरंजन।

मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा ता ओमी साधन मारिए जिहा कल कलना तेवे हो नाओ पचारिए ऐसी कलण खेडिए।

0: तोहे बन आवे।
1: गुर ज्ञान और ध्यान तत् सिंह तत् मिलावे, सच सच जानिए इक चित लिवलावे। काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै वसै देश हुकम।

अमृत चाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत धारा से प्रीतन एक तुम

पाप करे कर्म कर पावे, पेख कर निर्वाण जतन कर मानुख डहकावे। ओहो अंतर जामी जान पाप करे कर्म कर पावे, पेख कर निर्वाण जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर। उत तक उत ते उत पेख आवे लोभी फेर। जब लग टूटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त न कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। जब लग टूटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त न कोई। कहो नानक दयाल स्वामी

0: सांग वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा जतन करै मानुख डहकावै ओहो अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै भेख कर निर्भन।
1: जन्म

0: नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझेता है सत जुग रथ संतोख का धर्म गे रथवाओ त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ द्वाप रथ तपे का सत अगे रथवाओ काल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ महला पहला
1: सांत है सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब को सच समावे रिक कहे रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लय आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्मन हुआ नाव खुदाई अलो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर मिटो बारे जित मिले असम संभाले जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है पोहे था बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारे पार उतारे पार उतारे
0: ਵਿਚਾਰਿਆ

नौ सुजान और साहिब हुए दयाल कृपा करे ता सायका कराईसी सो सेवक सेवा करे जसनो हुक्म मनाईसी हुक्म मने ओ वे परवान ता खस मैं ता महल पाईसी।

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे रियायत। देग तेग फत हे बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बलो जीवा गुरु बलो।

0: करला वो गोबर तर न जाय। तो ती टिका तै जब माली तान मलेसा खाय। अंतर पूजा पण एक दे बस संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करहन वाद छुरी वगायन तिन गल ताग। तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओ ना पहया वे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आर। सरम धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर। मथै टिका तिड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का सार। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धान लै पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसै न जान। देखै चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़े यार। मत पिटै वे मत पिटै ए तन साडा फिटै। तन फिटै फेर करेन मन जूठै चुली प्रेम। कहो नानक सच त्याई है। सुच हो वै ता सच पाई है। पौड़ चित्त अंदर सब को वेख नदरी।

0: जे मोहगा कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगे वसे आणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ दलाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे ताले दे महला पहला
1: ज्यों जोरु सिरनावनी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसै नित्रित होए खुआर सुचे एह न आखिए बहन जे पिंडा धोए सुचे से नानका जिन मन वसिया सोए।

0: एक नहीं दात आपस से जो पाए, नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए, नानक सेवक काडी है जिसेती खसम समाए। पौड़ी नानक अंत न जापणी, हरता के पारावा आप कराए साख।

0: सा करनी सार करनी सा
1: अपनी हरता के भरावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए एक ना गली जंजीरिया एक तुझ तेरे बसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नान करना जिनकिया फिर तुसी करनी सा
0: तू नेचल करता सोई

0: संत भगत जन सोई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा, जतन करै मानुख डहकावै, ओहो अंतर जामी जानै, पाव करे कर मुकर पावै, भेख करै निर्वाणै।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है, यूनिट नंबर

0: सतगुरु ने दर्शाता भाई ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए। ये गुरबाणी गुरु वर्गा जे गुरु मिल जाए ऐसे सतगुरु की शरण विच जे मिल बैठण दा सबब बन जाए ते भाई ऐसे सतगुरु नूं अपना सिर सौंप देना चाहिए। सिर सौंपण दा भाव है अपनी सोच अपनी अकल अपने विचार सतगुरु जी दे अगे समर्पण कर देने चाहिए हैं छड देने चाहिए हैं और सतगुरु जी की सोच अपना लेनी चाहिए है। इसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए जे सिर असीं सतगुरु नूं सौंप देंगे तो सांझ बन जाएगी। हुण अज दे इस मुबारक विचार अंदर सतगुरु जी ने ये बात साडे सामने दर्शाई है ये उपदेश दिता है कि भाई देखो सतगुरु की ऐसी रहमत हुई सतगुरु ने ऐसी बख्शिश कीती है ऐसी समझ दिती है मैनू हुण जीवन जीवन का ढंग पता लग गया मैं जीवन किवें जीना है। मेरा मन जिहड़ा कदी ढेंदी कला विच जांदा सी कदी चढ़दी कला विच चले जांदा सी जिहड़ा मेरा मन हर वक्त जहर का व्यापारी रहिंदा सी जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पिछे हर वक्त लगा रहिंदा सी ए मेरा मन हुण सच नाम का गुरबाणी के उपदेश का व्यापारी बन गया बनजारा बन गया है ये हुण व्यापार करता है परमेश्वर के नाम का परमेश्वर के गुणा का परमेश्वर के ज्ञान का। भाई ये मन मेरा हुण सच्चा बनजारा बन गया है। पहला तो हालत यह सी कबहू जीअड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए पयाले लोभी जीअड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। आवागमन बनिया होया सी हर वक्त आवागमन मिंट मिंट सेकेंड सेकेंड ते आवागमन बनिया सी कदी मन चढ़ती कला विच चले जांदा कदी मन ढेंदी कला विच चले जांदा कदी मन गुरुद्वारे आके गुरबाणी गुरु नाल जुड़ के बैठण दी गल करदा है ते कदी मन इन्नी ढेंदी कला विच चले जांदा है कि विकारां विच लगातार गलतान रहण लग जांदा है। ये आवागमन हमेशा वास्ते बनिया लोभी जीअड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले। ये मन ये जीअड़ा इन्ना लोभी है टिकदा नहीं। हुण सतगुरु आखदे मैनूं गुरु ने समझ दित्ती मेरे मालिक ने ऐसा रहमत दा हाथ सिर ते रखिया मेरा मन कूड कबाड़ छड के आले दुआले दी दौड़ भज छड के हुण सच रास दा व्यापारी बन गया व्यापार करन वाला बन गया। थोड़ा जिहा असीं अपने समाज विच ध्यान देंगे हुण गुरु सवारियो तुसां देखिया होएगा साडे समाज विच बड़े भांतों भांत दे लोक मिल जाणगे कई ऐसे लोग ने जेड़े केवल अपनी कलम का सहारा लेंदे ने ते कलम दे सहारे अपना व्यापार चलाउंदे हैं। कुछ लोग ने जिन्हां नूं बड़ी भज दौड़ करनी पैंदी है बहुत कुछ कहना पैंदा है सुनना पैंदा है तां उन्हां दा व्यापार चलदा है। कोई छोटे हन कोई वड्डे हन किसी का ज्यादा है किसी का थोड़ा है और जदों असी इस तो हट के थोड़ा जिहा आम गृहस्थी वाल नजर मारांगे तो एक आम गृहस्थी भी अपनी सोच नूं इस तरीके की बना के रखता है कि किसी दुकान ते जांदा है किसी थां तों भी कोई भी थोड़ी बहुती छोटी मोटी कोई वस्तु खरीदनी है ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਵਧੀਆ ਲਵਾਂ ਪਰ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ ਵਸਤੂ ਉਹ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਹੰਡ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਵਸਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਿਓ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤਿਓ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤਿਓ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤਿਓ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਔਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਉਸਾਰੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ ਕੁਸ਼ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਦੀ पावन बाणी ने सानू ऐसा करने तो वरज दिता। बाबा कबीर जी दे बोल है भावे कि संसार दे इस समाज दे रहन सहन नाल संबंधित होण, पर जदों असीं इन्हां बोलां नूं पढ़ांगे इह साडे इसे ही संसार दे विच रहिंदे आ, धर्म कमाउण दी सानू जात दसदे आ। बाबा कबीर जी दे बोल है किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। भाई किसे ने ते लौंगां दा वपार कीता, किसे ने सुपारियां दा वपार कीता, किसे ने तांबे दा वपार कीता, पर बाबा कबीर जी आखदे नहीं, मैं एहो जिहियां चीजां दा वपारी नहीं हां, मैं धर्म की दुनिया च पैर रखिया, मैं सच का व्यापार करने वास्ते रखिया, मैं सच का व्यापारी हां। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी, संतों बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। भाई साडी ये खेप है, साडा ये भंडार है, असी सच नाम दे व्यापारी हां, गुरु दे नाल जुड़ के गुरु की बाणी नूं पढ़ के असी इस सच नाम का व्यापार करते हां। पर बहुता समाज से केवल ते केवल लौंगा सुपारियां ते तांबे चांदी तक ही रह जांदा है। बहुता समाज ते अपनी दौड़ नूं केवल ते केवल इत्थों तक ही रखता है कि कुछ खा पी लिया, कुछ वेख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ थोड़ा बहुता मनोरंजन कर लिया, बस इसो अगे धर्म नहीं है, इसे नूं ही धर्म मान लिया जांदा है। पर सतगुरु आखदे नहीं भाई, असां तां अपने मन की तैयारी इस तरीके नाल करनी है, अपने मन नूं सतगुरु जी की बाणी दे ज्ञान नाल इस तरीके नाल भरना है, इस तरीके नाल अपने मन नूं सतगुरु की बाणी नाल जोड़ना है कि इस मन दियां सारियां तांगां खत्म हो जाण, इस मन दे सारे स्वाद फिक्के पै जाण। पर ऐसा हुंदा नहीं, असीं इत्थों तक पहुंचदे नहीं। गुरबाणी की विचार नूं, गुरबाणी की जो दित्ती हुई सेध है उस नूं अपना के चलना बड़ा मुश्किल लगता है। हुण अज साडा समाज इसे उलझन विच फसिया है, सतगुरु की बाणी विच दर्शाए हुए गुणा का व्यापार घट ते आले दुआले दा जिहड़ा खिलरिया होया खलारा है, जिवें मैं पहला कह चुका है, एक मानसिक बिरति बिगड़ी हुई वाला व्यक्ति जिहड़ा है वह जिन्ना समान समाज विच जां सड़क के उत्ते खिलरिया होया मिलता है उसनूं इकट्ठा करता रहिंदा है, सुटदा रहिंदा है, उसका किसी चीज नाल लगा नहीं, किसी चीज की उहनूं तांग भी नहीं। जदों हुण ऐसा समाज साडा असीं देखांगे, जे किसी ने 10 मिनट अखां बंद करन दा टकवंज बनाया ते असीं अपना सारा कुछ छड के असीं कहने हां वह बड़ी समाधि लाउंदा है उत्थे चलिए, इस तों बाद जे किसी ने इस तों वध के अपना दुकानदारी अपनी दुकानदारी चलाउणी है वह इस नूं अखां मेटण नूं छड के ते वह कोई उहदे विच नवां एक कर्म होर दाखल कर लैंदा है, वह कहिंदा है साह इस तरह लैणे है, एक साह अंदर खिंचो एक साह बाहर कढो, वह कुछ इस तरह दीआं जोगियां वालीआं जुगतियां बना बना के भरमाउण दा जतन करदा है। असीं कहिंदे हां कल्लीआं अखां मेटण नाल की होणा है, अखां मेटदिआं होइआं नाल आह कम करना चाहीदा फिर कम चलेगा। तुसीं देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी सानू पढ़न वास्ते दित्ती गई, सतगुरु जी की बाणी सानू जीवन जात दर्शाउण वास्ते दित्ती गई, सतगुरु जी की बाणी ने साडे समाज नूं इहो जिहा जीवन दिता कि इतिहास साडा गवाह है। पर जदों असीं गुरबाणी की सोच नालों टुटे, गुरबाणी के सच सिद्धांत नूं विसारिया, गुरबाणी नूं पढ़ना छड्डिया, गुरबाणी नूं विचारना छड्डिया, तां फिर की होया कि अखंड पाठ की रवायत शुरू हुई। अखंड पाठ की रवायत शुरू हुई फिर कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि अखंड पाठ तो हो ही रहा है, अपने नाल जोड़न वास्ते किसी ने आख्या अखंड पाठ इंज नहीं करीदा इंज करीदा है, उन्होंने एक नवी मर्यादा कायम की। दूजे ने सोचा भी यह हुण इन्हां दा काम चल पिया आपां वेले फिरदे आपां की करना, उन्होंने सोचा नहीं जी इंज अखंड पाठ सफल नहीं हुंदा, अखंड पाठ का फल ते इंज मिलदा है, उन्होंने दूजा कर्म कट मारिया। तीजा कर्म चौथा कर्म, मैं हैरान रह गया जदों साडे इस पंथ के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़न की 16 प्रकार की मर्यादा जिहड़ी है वह लागू कर दी गई। 16 प्रकार की मर्यादा बना के अखंड पाठ करन दा यह संपट है जी, यह दूरा संपट है, यह तीरा संपट है, हद इथों तक लंघ गई कि एक बाबे ने अखंड पाठ रखिया वह संपट पाठ करता होया यह मर्यादा लागू कर गया किसी के घर विच, जदों संपट लगेगा असीं टल्ली खड़कावांगे संपट ला के कली खड़केगी ते एक बारले दरवाजे ते बिठाया होया बंदा ओ गन्ने लेके बैठा है जदो टली वजदी संपट लगता है ओ गन्ना वढ़ देंदा है जदो संपट लगता है ओ गन्ना वढ़ देंदा है। लोगों ने आख्या आ ते बड़ी मर्यादा वाला पाठ होया ए ते बहुत महंगा पाठ होया बड़ा उच्चे फल वाला पाठ होया। हुण सानू ये सोचना पएगा सतगुरु जी की बाणी तो सीध लैके ये केड़ा फल वाला पाठ है ये केड़ी मर्यादा है ये किस पंथ ने मर्यादा बनाई है ये किन्ने तरीका दर्शाया कि अखंड पाठ हो रहा है पाठ नू सुनो ना सुनो पाठ दे कोल बैठो ना बैठो पाठ की सिक्ख्या लो ना लो ते गन्नियां वाल ध्यान रखो टली वाल ध्यान रखो मारनी है कि नहीं मारनी। ऐसा कुछ साडे समाज विच हो गया पर बहुतिया लोगों ने एहो जिहियां रीतां अपना लईयां भाई इंज अखंड पाठ का फल नहीं मिलिया चलो इंज करवा लो इंज नहीं मिलिया फिर दूरा संपट कराओ जे दूरा नहीं मिलिया फिर तीरा करा लो जे तीरे नाल भी काम नहीं करिया फिर तुसी हुण गन्ने वटन वाला करा लो। एहो जिहियां मर्यादा बना बना के साडे पंथ नूं लगातार कुराए पाया गया पर सतगुरु जी नूं पुछ के देखना असां सतगुरु जी तों सीध लैणी है। गरीब नवाज सतगुरु जी ने पावन बाणी अंदर मर्यादा इको ही दर्शाई और आखिया गावी है सुनिए मन रखिए भाओ। भाई गाउणा चाहिदा है सुनना चाहिए पर गाउन सुन वेले मर्यादा की है मन रखिए भाओ मन विच प्यार रख के गाउना चाहिए मन विच प्यार रख के सुनना चाहिए इस तों वड्डी होर कोई मर्यादा नहीं हो सकती। पर असी सतगुरु जी की दर्शाई मर्यादा नूं सतगुरु के दर्शाए हुए विधान नूं छड के होर कर्म विच उलझ गए। सतगुरु गरीब नवाज ने आख्या भाई नहीं जदों असी गुरु कोलों सीध लवांगे मन सच का व्यापारी बनेगा जदों असी सतगुरु जी ते टेक रखांगे भरोसा रखांगे साडा मन गुणा का गाहक बनेगा गुणा का गाहक बनता होया गुण लैण वास्ते किन्नी भी कुर्बानी करनी पवे मनुख कर जाएगा सचमुच कर जाएगा। सतगुरु के गुणा नाल जिन्हां दी सांझ बनी वड्डी तों वड्डी कीमत तारी है बहुत महंगी तों महंगी कीमत तारी है वड्डियां वड्डियां मुश्किलां दे नाल टकराउण दा उन्हां ने लगातार जज्बा धारण कीता मुश्किलां नाल टकराउंदिआं होइआं भी सतगुरु दे गुणां नालों सांझ नहीं तोड़ी। पर असीं इत्थों तक पहुंचे नहीं इत्थों तक पहुंचण दा जतन भी नहीं करदे। सतगुरु गुरु अमरदास आखदे जे जतन करांगे हर रास मेरी परमेश्वर की यह सतगुरु की बाणी ए नाम धन मेरी रास पूंजी है मेरे जीवन का खजाना है मन वणजारा मन इस रास पूंजी नूं इकट्ठा करन वाला है व्यापारी बन गया है इस रास पूंजी का हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जाने इस राशि का इस भंडारे का इस धन दौलत का इन्हां गुणां का गुरु को पता लगा गुरु को समझ लगी गुरु ने दर्शाया कि यह रास पूंजी ही तेरे जीवन का असली खजाना है। पर कई बारी ए भी साडे समाज का रुझान बनिया होया कच्चा धन संचै मूर्ख गावारा कच्चा धन संचते रहने निंदिया कठी कर ली चुगली कठी कर ली बहुत सारा वैर भावना ईरखा कठी कर ली ए कच्चा धन है ए नाल निभण वाला नहीं ए जीवन नूं सच्यार नहीं बनाउंदा एक कच्चा धन जीवन नूं बर्बाद करता है ईरखा दा धन नफरत दा धन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा कच्चा धन ए जीवन नूं बर्बाद करता है। सतगुरु ने आख्या नहीं तुसे सच्चे धन दे व्यापारी बनना है सच्चा धन सतगुरु जी दी बाणी च दर्शाए गुण तुसा सत दे व्यापारी बनना है संतोख दे व्यापारी बनना है तुसा धीरज दे व्यापारी बनना है धर्म दे व्यापारी बनना है इन्हां गुणां नूं अपने जीवन विच बिहाजदे जाना है इन्हां गुणां नूं अपने जीवन विच इकट्ठियां करदे जाना है। तां ही ते सतगुरु गरीब नवाज कृपा करके आखदे आ हर हर नित जपियो जियो। भाई सतगुरु की इस बाणी नूं परमेश्वर की सिद्धो सलाह नूं नित नित हर रोज दिलों जपियो दिल बना के मन की इच्छा बना के तांग बना के प्यार दे नाल जपियो जदों फिर जपदे आ ना इस तरह मन मन करके प्यार नाल उत्साह नाल सोहना सतगुरु नाल संबंध बना के जपदे आ ते फिर सतगुरु आखदे उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई। भाई मेरा हिरदा उछाले मारदा है रब जी नाल मिलाप वास्ते हुण नहीं ना मारदा अजे नहीं मारदा अजे सानू लगदा है कदों खेड़ा छुट जाए कदों इस गल तों भज जाइए कदों असीं इस गल नालों संबंध तोड़ लईए कौन होवे जिहड़ा सानू बणिया बणाया सारा कुछ दे देवे। सतगुरु आखदे नहीं मन उछाले मारे, मन दे विच तांग पैदा हो जाए, मैं सतगुरु नाल सांझ पाउणी है, मैं बाणी पढ़नी है। तुसां वेख्या होएगा किसे व्यक्ति का कोई कीमती समान गवाच जाए, कोई गहना गवाच जाए, कोई परस गवाच जाए, जां कोई होर महंगी वस्तु गवाच जाए, वह भालदा है, इधर उधर दौड़ भज करता है, दूजियां नूं पुछदा है भाई मेरा समान गवाच गया, मेरी वस्तु गवाच गई, तुसां देखी नहीं, तुहानूं लभी नहीं। जे साडा मन सच धर्म वल पैर रखेगा साडा भी यही हाल होएगा, असीं भी इसे तरीके नाल चलांगे, भाई मैं अज बाणी नहीं पढ़ी, मेरा मन नहीं देखता, मैं अज सतगुरु जी नाल गल्लां नहीं कीतियां, मैं सतगुरु जी की बाणी की विचार नाल अपनी गिरती नहीं बना सकिया, अज मैं विचार नहीं सकिया, अज मैं सतगुरु जी की बाणी तो दूर हो गया, अज मेरी सांझ सतगुरु नालों टुट गई। जे साडा ऐसा प्यार बन जाएगा तो फिर सतगुरु ने इहो जिहा उपदेश भी पावन बाणी अंदर दिता है कि एक निमख वास्ते, एक सैकंड वास्ते भी सतगुरु की बाणी नालों दूर होना मैनू भारा लगता है, बड़ी दुखदायक गल लगती है, मेरा मन हुण हटता नहीं, मेरा मन लगातार जुड़िया होया। सतगुरु गरीब नवाज बख्शिश करके आखते है भाई लाहा खटियो दिहाड़ी, ये अपने जीवन का लाहा खटना है, प्राप्त करना है, घाटा नहीं लाभ प्राप्त करना है। साडा समाज पंजाब की धरती से तो मैं बहुत देखिया, घरों दुध के डब्बे भर के डेरे ते जा आउंदे आ, मत्था टेक आउंदे आ, उत्थों पानी का डब्बा भर के घर नूं लै आउंदे आ, ये व्यापार करदे आ, घरों महंगीआं वस्तुआं जाके उत्थे भेंट कर आउंदे आ, और उत्थों केवल फुलियां लैके जां केवल मखाने लैके प्रसाद लैके ते घर नूं आ जांदे, ये सच का व्यापार नहीं है। सच का व्यापार तो यह है असि सतगुरु जी को आए हैं, सतगुरु जी के उपदेश मन के विचार के पढ़ के अपने जीवन में कोई सेध पैदा करिए, कोई क्रांति कोई इनकलाब वाली गल साडे जीवन में आवे, जो कुछ असि कर रहे हैं उसनु सतगुरु जी की बाणी के राही विचारन का यतन करिए। ए धन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाड़ा, भाई ए धन उन्हां नूं मिलदा है जेड़े अपने जीवन आचार नूं उच्चा चुकण दा जतन करदे है, परमेश्वर नूं चंगे लग जांदे है, परमेश्वर नूं पा जांदे है, परमेश्वर दी नजर विच कबूल हो जांदे है, ए धन फिर उन्हां नूं मिलदा है, ओ इस धन दे व्यापारी बनदे हन। कहे नानक हर रात मेरी मन होआ बनजारा, भाई मेरा मन बनजारा बन गया है, मेरे मन ने इस धन का व्यापार करन दा लगातार उपराला किया है, उपराला कर रहा है, आओ असी भी जतन करिए, सतगुरु के इस उपदेश नूं मन लईए, वणज करो बन जा रहे हो, वखर लैहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल, अगे शाह सुजान है, लैसी वस्त संभाल। भाई वह बड़ा सियाणा है, वह धोखा नहीं खांदा, वह खोट नूं प्रवान नहीं करदा, उसने तो सचो सच कबूल करना है, क्योंकि सतगुरु ने कहता उत है सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कटे जज मालिया, सतगुरु की बाणी ते तो सच्चे ही खरे उतरनगे, सच्चे ही प्रवान होणगे, दूजे झूठे प्रवान नहीं हो सकते। आओ खोट की रात नूं छड के, कच्ची रात नूं छड के सतगुरु के गुणा के भंडार नाल मन बिरतियां जोड़न का जतन करिया करिए। भगत रविदास ने होका दिता, ओए दुनियादारो, ओ दुनिया वालियो, आओ मैं तुहानू होका दिना आ, मैं सच्चे नाम का भंडार लभिया है, मैं अपने इन्हां ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया के राही, मैं अपने इस जीवन विच सच नाम का व्यापार किया है, आओ जे तुहाडे विच कोई है मैं होका दे के कहना, आओ मेरे नाल लगो, आओ मेरे नाल बैठो, आपां सच्चे नाम का व्यापार करिए, मेरा भी लद्दिया जाएगा, तुहाडा भी लद्दिया जाएगा। भगत रविदास ने ते होका दे दिता, को बनजारो राम को मेरा टांडा लद्दिया जाए रे, सतगुरु कृपा करन, आओ नाम तन विहाज दे, गुरमत दी इस विचार नूं धारण करदिया होया, गुरमत दे सोहणे सिद्धांत नूं जीवन विच लैंदिया असीं वी संसार नूं होका देईए, असीं वी संसार नूं आखीए आओ संसार दे लोको जीवन नूं सौखा ते सोहणा बनाउण लई गुरु नाल जुड़न दा जतन करिए। सतगुरु कृपा करन, फुल्लां चुक्कां दी खिमा इन्हीं विचार प्रवान होईआं फुल्लां चुक्कां दी खिमा करदे होए असीस बख्शिश करो, आखो जी प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।
1: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन, धार्मिक कथा, ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने, जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
1: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले, तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
2: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कई बार दूजे की चीज चंगी लगती है, बंदा फिर जायज नजायज तरीके नाल हड़प भी लैंदा। ते महाराज ने कहा खा तां लएगा, उत्तों बिजोग भी पैदा होना ते रोग भी, गुरु नालों भी टुट जाना ते रोग भी पैदा होने ने। दूजे की चीज चंगी लगती है चलाकी चुस्ती दे नाल, जां तू तक्के नाल हड़प भी सकदा है। एक बेनती समझो, कल्ले पदार्थ ना दूजे की माया नहीं, कई बार दूजे का हक खा जाना वह भी मुर्दार खान के बराबर है। महाराज ने कहा मिठा करके, वह चीज मिठी लगती है, पाप कई बार मिठा लगता है पर उदा फल भुगतना बहुत औखा है। अज महाराज ने बख्शिश की, कह लगे उन्होंने तो फिर रो

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North फीस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण ले तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

मान रे प्रभ की शरण बिचारो, जिह सिमरत गनका सी उदरी, ताको जास उरतारो।

दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गाज ग्राह ते छूटा।

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश मान हुंदे आ आए अज दे पावन हुक्म नूं इस समय आप जी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरण छो अस्थान तो प्राप्त कन्ना राही कीता है। साहिब दी रहमत बख्शिश बन आई तमाम संसार नूं एक ऐसा मुख वाक बख्शिया है जिस नाल भुलिया भटकिया दुखिया विछड़िया अपना कुराहे राह दूर करके भुलिया भटकिया अपने दुख दूर करन दा राह प्राप्त करके मेरे साहब दे उपदेश नाल जिंदगी नू आनंदित बना सकदा। आओ साहब दी सीस लईए मेरे मालिक रहमत करन बहुत लोड़ है कि मन टिक जाए गुर शब्द नाल श्रद्धा विच पर जाए अते एक भावना रखे जो सुनिया उन्हू कमाउना जो सुना कमावे सो उतरा पार इन्हू संग्रह करना बुद्धि विच। आओ साहब रहमत करन शब्द नू विचारिया भी जा सके इस विच एकाग्रता भी बने इस विच श्रद्धा भी बने ते शब्द दी विचार नू धारण करन वाली बिरती भी बन आए। साहब रहमत करन आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130-4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3670-63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखोजी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नूं 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: नेता परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होई करता करना में नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी आले, मन एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जती सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई परापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहौ, आप हाथ दै मोहे बचावहौ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा।
सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पहव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पहव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाईया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आईया, शब्द ता गावह हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै, घर ता तेरै सब किश है, जिस देह सो पावै, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै,

आया कार सांत सोख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुन हो संत हो सबद धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद तित कर सभागै कर सभागै सबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निधे आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ।

मत उची मत पत दारा खाप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री नानकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोए। अमर पदार्थ नानका, मन मान्या सुख होए। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसुर, रसक रसक

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझ है समझावत। अलख निरंजन आखिए अकल अजून अकाल अपारा रव सस जोत उदोत लंग परम जोत परमेश्वर प्यारा जगमग जोत निरंतरी जग जीवन जग जय जयकारा जगमग जोत निरंतरी जग जीवन जग जय जयकारा नमस्कार संसार विच आदि पुरख आदेश उदारा चार वर्ण छे दर्शना

सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एकै, माने विश्वास प्रभ तारिया। चरण रेन बांछै नित नानक,

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी चौबी घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।